लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।

जाम साथी धुमधाम राइट सपन नया इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.